0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पेंतेकोस्त पर्व के अवसर पर संत पापा का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने 24 मई को पेंतेकोस्त महापर्व का मिस्सा बलिदान वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि पेंतेकोस्त के महोत्सव से पास्का अवधि अपनी पूर्णता को पहुंचती है। मुक्ति विधान की इस घटना को चिन्हित करने के लिए आज का सुसमाचार हमें सप्ताह के प्रथम दिन की ओर ले चलता है, अर्थात उस नए दिन की ओर जब पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को दिखलाई दिए। उन्होंने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। यीशु अपने महिमामय शरीर को व्यक्त करते हैं, विशेषकर अपने घावों को जो क्रूसित होने के चिन्ह थे। दुख भोग की ये निशानियां जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली थे अब परिवर्तित हो गए हैं। जो मर गए थे सदैव के लिए जीवित हैं। संत पापा ने कहा कि यीशु को देखकर शिष्यों को भी नया जीवन प्राप्त होता है। उन्होंने अपने को व्यारी की कोठरी में बंद कर लिया था। वे भयभीत थे, लेकिन यीशु उनके बीच में आते और खड़े हो जाते हैं। पेंतेकोस्त का महोत्सव इस भांति पास्का और यीशु ख्रिस्त के शरीर का पर्व बन जाता है, जो कृपा में हमारे लिए सब कुछ है। पुनर्जीवित की आत्मा शांति की आत्मा है। संत पापा ने कहा, उनके पास का रहस्य में ख्रिस्त ईश्वर और मानवता के मध्य शांति स्थापित करते हैं और पवित्र आत्मा इस शांति को हमारे हृदयों में उड़ेलती और पूरे विश्व में प्रसारित करते हैं। यह शांति क्षमा से उत्पन्न होती है और हमें क्षमा की ओर अग्रसर करती है। यह हमारे लिए स्वयं यीशु से मिले वरदान से शुरू होती है, जिन्हें हमने धोखा दिया, दोषारोपित किए और क्रूस पर चढ़ाया। वे हमें अपने प्रेम से आश्चर्यचकित करते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमें स्वयं कहते हैं, यदि तुम किसी के पापों की क्षमा करोगे तो वे अपने पापों से मुक्त किए जाएंगे। इन शब्दों के द्वारा यीशु हमें एक दिव्य कार्य में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यह अधिकार हमारे लिए एक वैश्विक मेल मिलाप की निशानी स्वरूप दी गई है। ईश्वर अपनी शांति के आत्मा को इतिहास के एक छोर से दूसरे छोर के लिए उड़ेलते हैं, क्योंकि जिन्होंने सबों को मुक्ति दिलाई वे किसी को अलग नहीं करते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा सृष्टि के शुरू से जीवन देने वाले ईश्वर हैं, जो जल पर विचरण करते थे और अब वे सृष्टि को नवीन बनाते हैं। वे विश्व के इतिहास को बदलते हैं। पेंतेकोस्त हमारे लिए सचमुच नए विधान के त्योहार की भांति प्रतीत होता है, ईश्वर और दुनिया के लोगों के बीच का विधान। हम ईश्वर के नए विधान को हमारे हृदयों में अंकित पाते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम के अक्षरों में ख्रिस्त और कलीसिया के शरीर में अंकित है। संत पापा ने कहा, यह विधान शांति का नियम है। हम इसमें प्रेम के दो आयामी आज्ञाओं को पाते हैं, जिसे आत्मा हर हृदय की धड़कन में याद दिलाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, आओ पवित्र आत्मा, क्योंकि वह हमें पहले ही दिया गया है। हम उनकी कामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही उनकी प्रतिज्ञा की गई है।
2: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
1: पुनर्जीवित की आत्मा प्रेरिताई की आत्मा है। इस दूसरे बिंदु पर चिंतन करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप हम ख्रिस्त की प्रेरिताई की ओर आकर्षित होते हैं, वह प्रेरिताई जो हमारे लिए ईश्वर से आती है और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की ओर लौटती है, जो पिता और पुत्र से आती है, जो एक त्रित्वमय ईश्वर में आराधी और महिमान्वित होती है। पवित्र आत्मा ख्रिस्त का जीवित प्रेम है जो हमें पूर्ण बनाता है, हमें प्रेरित करता और प्रेरिताई में हमें पोषित करता है। प्रेरितों में सुसमाचार घोषित करने की शक्ति में वही आत्मा मानवता को मुक्ति के वचनों की शिक्षा देती है। प्रेरितों ने पुनर्जीवित की सांसों को अपने में पाया है, यह घोषणा उनके होठों से निकलती है, जिसे हम पेत्रुस की आवाज में और उनके संग होने वालों में पाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु को घोषित करना शुरू करते हैं, जो विश्वास से शुरू होता है। वास्तव में पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य हम में विश्वास लाना है, जिसके द्वारा हम यह घोषित करते हैं कि यीशु ही ईश्वर है। यह विश्वास जीवित और अच्छे कार्यों में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम करुणा के कार्य और गुणों में पाते हैं। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि हम सचमुच में सुसमाचार के सहयोगी हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी घोषणा आशा और खुशी में होती है, क्योंकि हम सभी दुनिया को नवीन बनाते हैं, उनकी ज्योति और नमक बनते हैं। निश्चित रूप से हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर के वचनों के कारण, जो हम पापियों को पवित्र करते, हमारे कोढ़ को शुद्ध करते और उस प्रेरित को परिवर्तित करते जो उन्हें अस्वीकार करता है। इस प्रेरिताई की शुरुआत ईश्वर की सच्चाई और मानव के बारे में घोषित करते हुए होती है, क्योंकि पुनर्जीवित की आत्मा सच्चाई की आत्मा है, जिसके बारे में स्वयं ईश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी कलिस्स की एकता की मांग करते हैं। यह एकता ईश्वर के प्रेम में आधारित है, जो प्रेम के स्रोत हैं। आत्मा, जिन्होंने नबियों के माध्यम से कहा है, सदैव सत्य में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे हम में समझ, एकजुटता और जीवन की एक रूपता लाते हैं। भाषाओं के उपहार को हम एक विश्वास के संदर्भ में समझते हैं। सहायक हमें इस समझ में उत्पन्न होने वाले विघन से बचाते हैं। इसके साथ ही विभाजन, दिखावा और उन बातों को दूर करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को धूमिल करती है। इस तरह ईश्वर के द्वारा मिलने वाली सच्चाई सबों के लिए एक मुक्ति का शब्द बनती है। संत पापा ने कहा कि वास्तव में पुनर्जीवित की आत्मा एक बार हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि निरंतर होता है, जैसे कि यूखरिस्ट जीवित ख्रिस्त की सजीव उपस्थिति है, जो हमें सदैव पोषित करते हैं। ठीक उसी भांति पवित्र आत्मा अपनी कृपाओं को बपतिस्मा में हमें प्रदान करते हैं, जो हमें ख्रिस्तीय बनाता है, दृढ़ीकरण में जो हमें साक्षी के रूप में स्थापित करता है, और अभियंजन के द्वारा वे हमें प्रेरित और ईश प्रजा हेतु चरवाहा बनाता है। पवित्र आत्मा सबों को जन सामान्य की भलाई हेतु दिया गया है। यही कारण है कि हम कलिस्य हैं, एक शरीर जो ईश्वर में निवास करते और दुनिया की सेवा करते हैं। आत्मा का धन्यवाद जो हम सबों के लिए सच्ची शांति लाते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, उत्साही हृदय से आइए हम आज पुनर्जीवित यीशु की आत्मा से प्रार्थना करें, जिससे वे हमें युद्ध की बुराई से बचाए, जो शक्ति से नहीं प्रेम की सर्व शक्तिमता से जीती जा सकती है। हम निवेदन करें कि वे मानवता को दुखों से मुक्त करें, जो अकूत शक्ति से नहीं बल्कि अथक उपहार से होता है। हम प्रार्थना करें कि वे हमें यीशु ख्रिस्त के नाम में घोषित मुक्ति के माध्यम पापों के जंजाल से मुक्त करें। यही वह कृपा है जो प्रेरितों में साहस भरता है।
2: Lo infonda anche a noi oggi e sempre per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
1: वह उसी तरह आज और हमेशा कलिस्य की माता मरियम की मध्यस्थता के जरिए हम में भी साहस भरता रहे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 25 मई को वाटिकन के सिनड हॉल में संत पापा लियो 14वें की उपस्थिति में उनके पहले विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास को प्रस्तुत किया गया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने सभा का संचालन किया। कार्डिनल पारोलिन के स्वागत भाषण के बाद वक्ताओं ने मैनिफिका ह्यूमानिटास के विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया। वक्ताओं में धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस, डरहम यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर एन आर रोलैंड्स, एंथ्रोपिक यूएसए के को फाउंडर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्याख्या पर रिसर्च हेड क्रिस्टोफर ओल्लाह, सांता क्लारा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर लियोकार्डी लुशुम्बो आईटी, सतत मानव विकास विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी थे। वक्ताओं के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपना संदेश दिया। संत पापा ने अभिवादन कर कहा, मैं इस मीटिंग को आयोजित करने वाले सभी लोगों, अपनी काबिलियत और अनुभव साझा करने वालों और आप सभी का जो यहाँ या ऑनलाइन में है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह आशा की कितनी बड़ी निशानी है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। यह बातचीत इस पल की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती है, साथ ही यह भरोसा भी कि हम सभी मिलकर अपने समय के बड़े सवालों को समझ सकते हैं और इसलिए इंसानियत का भविष्य भी। संत पापा ने कहा कि इतिहास के खास मौकों पर कलीसिया को सुसमाचार और इंसान की गरिमा की रोशनी में नई चीजों को समझने के लिए बुलाया जाता है। 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने फैक्ट्री में काम करने वालों की हालत देखी। उनके परिवार उजड़ गए और तेजी से हो रहे औद्योगिक बदलाव से गरीबी के नए रूप पैदा हुए। वे समझ गए थे कि कलीसिया दूर नहीं रह सकती। इंसानी गरिमा को खतरे में डालने वाले एक बड़े मोड़ पर विश्व पत्र रेरुम नोवारुम ने चल रही नई चीजों के बारे में अपनी सुसमाचारी और सामाजिक बात कही। आज हम खुद को ऐसे ही बड़े बदलाव का सामना करते हुए पा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से ही हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को छू रही है और उन फैसलों पर असर डाल रही है जो इंसानी साथ रहने को आकार देते हैं। यह युद्ध लड़ने के तरीके को भी बहुत ज्यादा बदल रही है। संत पापा लियो 13वें की तरह संत पापा को लगता है कि उन्हें एक और बड़े बदलाव को भरोसे की आंखों से, समझदारी से, रहस्य के लिए खुलेपन से और गरीबों और धरती की चीखों को अपने दिल में गूंजते हुए देखने की जिम्मेदारी दी गई है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया लंबे समय से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए काम कर रही है। यह जानते हुए कि हर बड़ी टेक्निकल ताकत लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है और इसलिए इसके साथ सही नैतिक समझ और पब्लिक कंट्रोल भी होना चाहिए। परमाणु हथियार खत्म करना शांति और इंसानी परिवार की गरिमा के लिए एक सेवा है। संत पापा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संत पापा ने कलीसिया और मानव परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए हम एक दूसरे की बात सुनना सीखें, आज की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करें और एक ज्यादा इंसानी और भाईचारे वाला समाज बनाने में सहयोग दें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में यूरोपियन पार्लियामेंट के जनसांख्यिकी पर इंटर ग्रुप का अभिवादन कर कहा, मुझे जनसांख्यिकी पर आपके सम्मेलन के अवसर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अलग अलग राजनीतिक राय को दिखाते हुए अपने अपने लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर महादेश के जनसांख्यिकी सवाल पर ध्यान देना निश्चित रूप

इसके अलावा हाल के दशकों में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के संस्थापकों की क्रिस्तीय प्रेरणा को नकारने से बहुत ज्यादा बांझपन का दौर आया है। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत से लोग जन्म लेने के अधिकार से वंचित हो गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि युवाओं को भविष्य का सामना करने के लिए जरूरी चीजें और सांस्कृतिक साधन देने में नाकामयाबी रही है। इसलिए इन सभी मुद्दों पर अकादमिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को मिलकर तुरंत अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने की जरूरत है। जनसांख्यिकी चुनौती यूरोप के मानव विज्ञान, सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए एक अहम मोड़ है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में बार्सिलोना इक्वेटोरियल सर्कल के प्रतिनिधियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने वाटिकन में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन को पवित्र आत्मा के कामों के लिए खुला रखने हेतु कहा जाता है, जिसमें ख्रीस्तीय दया करने की लगातार इच्छा रखने वाले मनोभाव हो। यह एक धार्मिक गुण है जिसे हम सभी चीजों से ऊपर ईश्वर और दूसरों को अपने जैसा प्यार करते हैं, और यह ईश्वर के लिए प्यार की वजह है। इसलिए ख्रीस्तीय कोई साधारण परोपकारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक दयालु व्यक्ति है जो निस्वार्थ रूप से प्यार करता है और सक्रिय रूप से दूसरों की पूरी भलाई चाहता है। और रविवार को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के बाद संत पापा लियो 14वें ने चीनी कलीसिया द्वारा मनाए गए विश्व प्रार्थना दिवस को याद किया। संत पापा ने बताया कि प्रार्थना का यह दिन ख्रिस्तियों की सहाई का धन्यकुमारी मरिया के त्यौहार के साथ आता है, जिनकी शंघाई के शेशान के तीर्थालय में पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान दिया जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पेंतेकोस्त पर्व के अवसर पर संत पापा का दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने 24 मई को पेंतेकोस्त महापर्व का मिस्सा बलिदान वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि पेंतेकोस्त के महोत्सव से पास्का अवधि अपनी पूर्णता को पहुंचती है। मुक्ति विधान की इस घटना को चिन्हित करने के लिए आज का सुसमाचार हमें सप्ताह के प्रथम दिन की ओर ले चलता है, अर्थात उस नए दिन की ओर जब पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को दिखलाई दिए। उन्होंने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। यीशु अपने महिमामय शरीर को व्यक्त करते हैं, विशेषकर अपने घावों को जो क्रूसित होने के चिन्ह थे। दुखभोग की ये निशानियां जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली थे अब परिवर्तित हो गए हैं, जो वे जो मर गए थे सदैव के लिए जीवित हैं। संत पापा ने कहा कि यीशु को देखकर शिष्यों को भी नया जीवन प्राप्त होता है। उन्होंने अपने को व्यारी की कोठरी में बंद कर लिया था, वे भयभीत थे, लेकिन यीशु उनके बीच में आते और खड़े हो जाते हैं। पेंतेकोस्त का महोत्सव इस भांति पास्का और यीशु ख्रिस्त के शरीर का पर्व बन जाता है, जो कृपा में हमारे लिए सब कुछ है। पुनर्जीवित की आत्मा शांति की आत्मा है। संत पापा ने कहा, उनके पास का रहस्य में ख्रिस्त ईश्वर और मानवता के मध्य शांति स्थापित करते हैं और पवित्र आत्मा इस शांति को हमारे हृदयों में उड़ेलती और पूरे विश्व में प्रसारित करते हैं। यह शांति क्षमा से उत्पन्न होती है और हमें क्षमा की ओर अग्रसर करती है। यह हमारे लिए स्वयं यीशु से मिले वरदान से शुरू होती है, जिन्हें हमने धोखा दिया, दोषारोपित किए और क्रूस पर चढ़ाया। वे हमें अपने प्रेम से आश्चर्यचकित करते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमें स्वयं कहते हैं, यदि तुम किसी के पापों की क्षमा करोगे तो वे अपने पापों से मुक्त किए जाएंगे। इन शब्दों के द्वारा यीशु हमें एक दिव्य कार्य में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यह अधिकार हमारे लिए एक वैश्विक मेल मिलाप की निशानी स्वरूप दी गई है। ईश्वर अपनी शांति के आत्मा को इतिहास के एक छोर से दूसरे छोर के लिए उड़ेलते हैं, क्योंकि जिन्होंने सबों को मुक्ति दिलाई वे किसी को अलग नहीं करते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा सृष्टि के शुरू से जीवन देने वाले ईश्वर हैं, जो जल पर विचरण करते थे और अब वे सृष्टि को नवीन बनाते हैं। वे विश्व के इतिहास को बदलते हैं। पेंतेकोस्त हमारे लिए सचमुच नए विधान के त्योहार की भांति प्रतीत होता है, ईश्वर और दुनिया के लोगों के बीच का विधान। हम ईश्वर के नए विधान को हमारे हृदयों में अंकित पाते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम के अक्षरों में ख्रिस्त और कलीसिया के शरीर में अंकित है। संत पापा ने कहा, यह विधान शांति का नियम है। हम इसमें प्रेम के दो आयामी आज्ञाओं को पाते हैं, जिसे आत्मा हर हृदय की धड़कन में याद दिलाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, आओ पवित्र आत्मा, क्योंकि वह हमें पहले ही दिया गया है। हम उनकी कामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही उनकी प्रतिज्ञा की गई है।
2: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
1: पुनर्जीवित की आत्मा प्रेरिताई की आत्मा है। इस दूसरे बिंदु पर चिंतन करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप हम ख्रिस्त की प्रेरिताई की ओर आकर्षित होते हैं, वह प्रेरिताई जो हमारे लिए ईश्वर से आती है और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की ओर लौटती है, जो पिता और पुत्र से आती है, जो एक त्रित्वमय ईश्वर में आराधी और महिमान्वित होती है। पवित्र आत्मा ख्रिस्त का जीवित प्रेम है जो हमें पूर्ण बनाता है, हमें प्रेरित करता और प्रेरिताई में हमें पोषित करता है। प्रेरितों में सुसमाचार घोषित करने की शक्ति में वही आत्मा मानवता को मुक्ति के वचनों की शिक्षा देती है। प्रेरितों ने पुनर्जीवित की सांसों को अपने में पाया है, यह घोषणा उनके होठों से निकलती है, जिसे हम पेत्रुस की आवाज में और उनके संग होने वालों में पाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु को घोषित करना शुरू करते हैं, जो विश्वास से शुरू होता है। वास्तव में पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य हम में विश्वास लाना है, जिसके द्वारा हम यह घोषित करते हैं कि यीशु ही ईश्वर है। यह विश्वास जीवित और अच्छे कार्यों में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम करुणा के कार्य और गुणों में पाते हैं। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि हम सचमुच में सुसमाचार के सहयोगी हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी घोषणा आशा और खुशी में होती है, क्योंकि हम सभी दुनिया को नवीन बनाते हैं, उनकी ज्योति और नमक बनते हैं। निश्चित रूप से हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर के वचनों के कारण, जो हम पापियों को पवित्र करते, हमारे कोढ़ को शुद्ध करते और उस प्रेरित को परिवर्तित करते जो उन्हें अस्वीकार करता है। इस प्रेरिताई की शुरुआत ईश्वर की सच्चाई और मानव के बारे में घोषित करते हुए होती है, क्योंकि पुनर्जीवित की आत्मा सच्चाई की आत्मा है, जिसके बारे में स्वयं ईश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं और अपने कलिस्य की एकता की मांग करते हैं। यह एकता ईश्वर के प्रेम में आधारित है, जो प्रेम के स्रोत हैं। आत्मा, जिन्होंने नबियों के माध्यम से कहा है, सदैव सत्य में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे हम में समझ, एकजुटता और जीवन की एक रूपता लाते हैं। भाषाओं के उपहार को हम एक विश्वास के संदर्भ में समझते हैं। सहायक हमें इस समझ में उत्पन्न होने वाले विघन से बचाते हैं। इसके साथ ही विभाजन, दिखावा और उन बातों को दूर करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को धूमिल करती है। इस तरह ईश्वर के द्वारा मिलने वाली सच्चाई सबों के लिए एक मुक्ति का शब्द बनती है। संत पापा ने कहा कि वास्तव में पुनर्जीवित की आत्मा एक बार हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि निरंतर होता है, जैसे कि यूखरिस्त जीवित ख्रिस्त की सजीव उपस्थिति है, जो हमें सदैव पोषित करते हैं। ठीक उसी भांति पवित्र आत्मा अपनी कृपाओं को बपतिस्मा में हमें प्रदान करते हैं, जो हमें ख्रिस्तीय बनाता है, दृढ़ीकरण में जो हमें साक्षी के रूप में स्थापित करता है, और अभियंजन के द्वारा वे हमें प्रेरित और ईश प्रजा हेतु चरवाहा बनाता है। पवित्र आत्मा सबों को जन सामान्य की भलाई हेतु दिया गया है। यही कारण है कि हम कलिस्य हैं, एक शरीर जो ईश्वर में निवास करते और दुनिया की सेवा करते हैं। आत्मा का धन्यवाद जो हम सबों के लिए सच्ची शांति लाते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, उत्साही हृदय से आइए हम आज पुनर्जीवित यीशु की आत्मा से प्रार्थना करें, जिससे वे हमें युद्ध की बुराई से बचाए, जो शक्ति से नहीं प्रेम की सर्व शक्तिमता से जीती जा सकती है। हम निवेदन करें कि वे मानवता को दुखों से मुक्त करें, जो अकूत शक्ति से नहीं बल्कि अथक उपहार से होता है। हम प्रार्थना करें कि वे हमें यीशु ख्रिस्त के नाम में घोषित मुक्ति के माध्यम पापों के जंजाल से मुक्त करें। यही वह कृपा है जो प्रेरितों में साहस भरता है।
2: Lo infonda anche a noi oggi e sempre per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
1: वह उसी तरह आज और हमेशा कलिस्य की माता मरियम की मध्यस्थता के जरिए हम में भी साहस भरता रहे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 25 मई को वाटिकन के सिनड हॉल में संत पापा लियो 14वें की उपस्थिति में उनके पहले विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास को प्रस्तुत किया गया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने सभा का संचालन किया। कार्डिनल पारोलिन के स्वागत भाषण के बाद वक्ताओं ने मैनिफिका ह्यूमानिटास के विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया। वक्ताओं में धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस, डरहम यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर एन आर रोलैंड्स, एंथ्रोपिक यूएसए के को फाउंडर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्याख्या पर रिसर्च हेड क्रिस्टोफर ओल्लाह, सांता क्लारा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर लियोकार्डी लुशुम्बो आईटी, सतत मानव विकास विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी थे। वक्ताओं के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपना संदेश दिया। संत पापा ने अभिवादन कर कहा, मैं इस मीटिंग को आयोजित करने वाले सभी लोगों, अपनी काबिलियत और अनुभव साझा करने वालों और आप सभी का जो यहाँ या ऑनलाइन में है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह आशा की कितनी बड़ी निशानी है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। यह बातचीत इस पल की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती है, साथ ही यह भरोसा भी कि हम सभी मिलकर अपने समय के बड़े सवालों को समझ सकते हैं और इसलिए इंसानियत का भविष्य भी। संत पापा ने कहा कि इतिहास के खास मौकों पर कलीसिया को सुसमाचार और इंसान की गरिमा की रोशनी में नई चीजों को समझने के लिए बुलाया जाता है। 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने फैक्ट्री में काम करने वालों की हालत देखी। उनके परिवार उजड़ गए और तेजी से हो रहे औद्योगिक बदलाव से गरीबी के नए रूप पैदा हुए। वे समझ गए थे कि कलीसिया दूर नहीं रह सकती। इंसानी गरिमा को खतरे में डालने वाले एक बड़े मोड़ पर विश्व पत्र रेरुम नोवारुम ने चल रही नई चीजों के बारे में अपनी सुसमाचारी और सामाजिक बात कही। आज हम खुद को ऐसे ही बड़े बदलाव का सामना करते हुए पा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से ही हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को छू रही है और उन फैसलों पर असर डाल रही है जो इंसानी साथ रहने को आकार देते हैं। यह युद्ध लड़ने के तरीके को भी बहुत ज्यादा बदल रही है। संत पापा लियो 13वें की तरह संत पापा को लगता है कि उन्हें एक और बड़े बदलाव को भरोसे की आंखों से, समझदारी से, रहस्य के लिए खुलेपन से और गरीबों और धरती की चीखों को अपने दिल में गूंजते हुए देखने की जिम्मेदारी दी गई है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया लंबे समय से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए काम कर रही है, यह जानते हुए कि हर बड़ी टेक्निकल ताकत लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है और इसलिए इसके साथ सही नैतिक समझ और पब्लिक कंट्रोल भी होना चाहिए। परमाणु हथियार खत्म करना शांति और इंसानी परिवार की गरिमा के लिए एक सेवा है। संत पापा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संत पापा ने कलीसिया और मानव परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए हम एक दूसरे की बात सुनना सीखें, आज की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करें और एक ज्यादा इंसानी और भाईचारे वाला समाज बनाने में सहयोग दें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में यूरोपियन पार्लियामेंट के जनसांख्यिकी पर इंटर ग्रुप का अभिवादन कर कहा, मुझे जनसांख्यिकी पर आपके सम्मेलन के अवसर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अलग अलग राजनीतिक राय को दिखाते हुए अपने अपने लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर महादेश के जनसांख्यिकी सवाल पर ध्यान देना निश्चित रूप से सही समय पर है, क्योंकि यह मुद्दा लाखों लोगों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका व्यवहारिक असर होगा जो पुराना महादेश बन रहा है, अब अपने शानदार इतिहास की वजह से नहीं बल्कि अपनी बढ़ती उम्र की वजह से। संत पापा ने कहा कि जनसांख्यिकी डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि ये पिता, माता और बच्चों के बारे में बताते हैं और बच्चे ही भविष्य हैं।
फिर भी भविष्य की बात करना एक अभिन्न और सतत विकास की ओर इशारा करता है, जो पीढ़ियों के बीच एकजुटता के बिना बहुत ज्यादा रुक जाता है। इसके अलावा हाल के दशकों में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के संस्थापकों की क्रिस्तीय प्रेरणा को नकारने से बहुत ज्यादा बांझपन का दौर आया है। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत से लोग जन्म लेने के अधिकार से वंचित हो गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि युवाओं को भविष्य का सामना करने के लिए जरूरी चीजें और सांस्कृतिक साधन देने में नाकामयाबी रही है। इसलिए इन सभी मुद्दों पर अकादमिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को मिलकर तुरंत अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने की जरूरत है। जनसांख्यिकी चुनौती यूरोप के मानव विज्ञान, सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए एक अहम मोड़ है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में बार्सिलोना इक्वेटोरियल सर्कल के प्रतिनिधियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने वाटिकन में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन को पवित्र आत्मा के कामों के लिए खुला रखने हेतु कहा जाता है, जिसमें ख्रिस्त या दया करने की लगातार इच्छा रखने वाले मनोभाव हो। यह एक धार्मिक गुण है जिसे हम सभी चीजों से ऊपर ईश्वर और दूसरों को अपने जैसा प्यार करते हैं, और यह ईश्वर के लिए प्यार की वजह है। इसलिए ख्रिस्तीय कोई साधारण परोपकारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक दयालु व्यक्ति है जो निस्वार्थ रूप से प्यार करता है और सक्रिय रूप से दूसरों की पूरी भलाई चाहता है। और रविवार को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के बाद संत पापा लियो 14वें ने चीनी कलीसिया द्वारा मनाए गए विश्व प्रार्थना दिवस को याद किया। संत पापा ने बताया कि प्रार्थना का यह दिन ख्रिस्तियों की सहाई का धन्यकुमारी मरिया के त्यौहार के साथ आता है, जिनकी शंघाई के शेशान के तीर्थालय में पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान दिया जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: पृथ्वी धर्म और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं।
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की चर्चा करता है। आज हम भाग 4 का समापन करते हुए दस्तावेज के 5वें और अंतिम भाग, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ की शुरुआत करेंगे। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रीस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक एकता और विश्व पत्र उत उनुम सिंथ के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है, जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा में इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर, कलिसा के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता आधारित एकता के आदर्श की तलाश करना शामिल है, जो एकतावर्धक वार्ता के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती है। धर्म सभा इस बात की आशा करती है कि यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बनेगा, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में, जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं, जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है, जो सबों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, दूसरी कलिसियाओं और ख्रिस्तीय समुदायों से भ्रातृत्व में प्रतिनिधियों की धर्म सभा में समृद्ध भागीदारी इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम अपने एकतावर्धक प्रतिभागियों दोनों पूर्वी और पश्चिमी सिनोडल प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। एकतावर्धक वार्ता हमारे लिए सिनोडालिटी और कलिसिया की एकता की समझ को विकसित करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण बात है। यह हमसे एकतावर्धक सिनोडल अभ्यासों की मांग करती है, जिसमें सलाह मशविरा और विभिन्न जरूरी सवालों पर विचार मंथन करना शामिल है। यह हम सबों से पारस्परिक उत्तरदायित्व लेने हेतु निमंत्रण देती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने को उस रूप में पाते हैं जो हम हैं, हम जो करते हैं और जिसकी हम शिक्षा देते हैं। यह हमारी एकता है जो हमारे लिए एक बपतिस्मा में इसे संभव बनाती है, जो हमें एकता का आयाम सहभागिता और प्रेरिताई प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम ईश प्रजा के रूप में अपनी पहचान को पाते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस इस बात को घोषित करते हैं कि सन 2025 जयंती का वर्ष है, जिसमें हम निसिया कलिसिया की प्रथम एकतावर्धक आम सभा की वर्षगांठ मनाएंगे, जो हमारे विश्वास और ख्रिस्तीय एकता को निरूपित करती है। 1700वीं सालगिरह की तैयारी और इसका एक साथ मनाया जाना हमारे लिए एक अवसर होगा, जहां हम अपने विश्वास की गहराई को प्राप्त करेंगे और एक साथ मिलकर ख्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करेंगे तथा सिनोडालिटी के विभिन्न स्वरूपों को भी परंपराओं के संग साझा करेंगे। यह हमारे लिए पास्का को एक तिथि में मनाने हेतु पहल करने में मदद करेगा, जिससे हम यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को एक साथ मना सकेंगे। ये सारी चीज़ें सन 2025 में होंगी। यह हमें उन्हें घोषित करने की प्रेरिताई हेतु और अधिक शक्ति प्रदान करेगा, जो सारी दुनिया के लिए जीवन और मुक्ति हैं। श्रोताओं, सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के पांचवें भाग का शीर्षक है, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ। अपने शिष्यों को प्रेरिताई के लिए तैयार करते हुए यीशु उन्हें और एक बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने उनके ऊपर फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। श्रोताओं, पुनरुत्थान की संध्या को यीशु अपने शिष्यों को अपना मुक्तिदायी शांति का उपहार प्रदान करती और उन्हें अपनी प्रेरिताई के साझेदार बनाते हैं। उनकी शांति हमारे लिए जीवन की पूर्णता को व्यक्त करती है, ईश्वर के संग, भाई बहनों और सृष्टि के संग एकता को। उनकी प्रेरिताई ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है, जो हम में से प्रत्येक को दिया गया है, बिना किसी अपवाद के पिता के प्रेम और करुणा को घोषित करना। जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्द हमें इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर ने शुरू में क्या किया। अब अंतिम व्यारी के कमरे में आत्मा की सांस के साथ नए सृष्टि की शुरुआत होती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के एक समूह को हम उत्पन्न होता पाते हैं। श्रोताओं, ईश प्रजा के लोगों को एक उचित प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे वे सुसमाचार की खुशी का साक्ष्य दे सकें और सिनोडालिटी को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। सर्वप्रथम ईश्वर के स्वतंत्र बेटे बेटियों के रूप में यीशु ख्रिस्त का अनुसरण, प्रार्थना में उनके जीवन पर चिंतन और उन्हें उनमें पहचानना जो अपने में गरीब हैं। सिनोडालिटी में हम बुलाहटिए और प्रेरिताई सचेतना, कलिसिया के रिश्तों को जीने के एक नए तरीके और भागीदारी के संदर्भ में कलिसिया के नए आयाम की बातों को समाहित पाते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह भी है कि हम कलिसिया में आत्म परख का अभ्यास करें और मूल्यांकन की संस्कृति को अपनाएं। ये सारी चीजें अपने से नहीं आती हैं। जब तक हम इसके संदर्भ में अपने को प्रशिक्षण की प्रक्रिया से होकर गुजरने नहीं देते, सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिसिया की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाएगी कि बपतिस्मा में मिले उपहार को हमें सभों की भलाई हेतु उपयोग में लाने की जरूरत है। वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम इसकी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जैसे ही संत पापा लियो 14वें का विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास प्रकाशित हुआ, डरहम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी प्रोफेसर एना रोलाइंस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि इतना दमदार संदेश, जो हमारे AI युग के फायदे और नुकसान दोनों को बताता है, कलीसिया और दुनिया पर एक हमेशा रहने वाला छाप छोड़ेगा। संत पापा लियो द्वारा हस्ताक्षरित इस दस्तावेज का अनावरण 25 मई को वाटिकन के न्यू सिनड हॉल में स्वयं पापा की उपस्थिति में किया गया। संत पापा लियो, यह संत पापा लियो 13वें के ऐतिहासिक विश्व पत्र रेरुम नोवारुम की 135वीं वर्षगांठ पर हुआ। कार्यक्रम के बाद वाटिकन न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर रोलाइंस ने इस विश्व पत्र को दो खास वजहों से बहुत जरूरी योगदान बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, विश्व पत्र में बताए गए टेक्नोलॉजिकल मुद्दों को लेकर इंसानियत बहुत जरूरी समय का सामना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मुद्दों के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कोई कल नहीं है, क्योंकि काम करने का स्थान, श्रम, प्रवासन, परिवारों, राजनीतिक संगठनों और दुनिया भर के झगड़ों पर इनका असर अभी है, कल भी था और कल भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने माना कि बहुत से लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सवालों पर बात करने में संदेहजनक या खुद को काबिल नहीं समझते, और संत पापा विश्व पत्र में यह कहते हैं कि शायद कोई और इन चीजों के बारे में सोचेगा, लेकिन हमें इनके बारे में सोचना होगा और हमें इनके बारे में मिलकर सोचना होगा। धर्मशास्त्री ने सुझाव दिया कि मैग्निफिका ह्यूमानिटास की मुख्य चिंताओं में से एक यह निश्चित करना है कि ये सवाल सिर्फ निजी जगहों पर न छोड़े जाएं, जो इंसानी गरिमा के बजाय मुख्य रूप से मुनाफे से बनी हो। उन्होंने कहा कि विश्व पत्र इस बात को जोर देता है कि आम भलाई को बढ़ावा देने के मकसद से होने वाली किसी भी बातचीत में उन आवाजों को केंद्र में होना चाहिए। प्रोफेसर रोलाइंस ने इंसानियत के बारे में गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सवाल उठाने में विश्व मंच पर संत पापा की अनोखी आवाज पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत पापा समाज को बुनियादी सवालों पर सोचने की चुनौती देते हैं। हम मानव जीवन को क्या समझते हैं? हम इंसान के तौर पर कौन हैं? हम अपनी इंसानियत और अपनी जिंदगी में किस मनोभाव और लक्ष्य को पाना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, वे झूठी कहानियों, इंसान होने के मतलब के बारे में झूठी बातों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं, खासकर जो दूसरों पर ताकत या दबदबा रखती है, चाहे वह राजनीति हो, युद्ध हो, लड़ाई हो या अर्थव्यवस्था हो। उन बातों के विपरीत संत पापा लियो ने जो कहा, उसे उन्होंने प्यार की सभ्यता का बहुत सुंदर नजरिया बताया। हमें मिलकर प्यार की उस सभ्यता को बनाने की जरूरत है, और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम इस भावना के साथ जिएं कि हम प्यार करने के लिए बनाए गए और सीमित जीव हैं, न्याय की चाहत रखते हैं और हम सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं। उधर पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफूर में चांद सीमा के पास अल्टीना शहर में तीव्र समर्थन बल RSF के हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए हैं। मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन शहर के ऊपर उड़ा और उसने 4 मिसाइलें दागी, जिनमें से एक बाजार के रेस्टोरेंट में गिरा, जिससे आम लोगों की मौत हो गई। कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। अप्रैल 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से इस लड़ाई में कथित तौर पर लगभग 4 लाख मौतें हुई हैं, जो दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट बना हुआ है। उधर प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में एबोला महामारी लगातार फैल रही है। कांगो के स्वास्थ्य संस्थान के नवीनतम डेटा के अनुसार संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है, जिनमें 101 की लैब से पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 119 संदिग्ध मौतें हुई हैं। इस वायरस के फैलने की गलत जानकारी और असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई है, जिसने सालों से इस पूर्वी अफ्रीकी देश को परेशान किया है। एक सर्वे के अनुसार प्रभावित इलाकों में साक्षात्कार किए गए लोगों में से 34% ही इबोला फैलने के तरीकों को सही ढंग से पहचान पाए हैं
आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस बीमारी को आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी घटना या पैसे जुटाने के लिए बनाई गई एक योजना मानता है। उधर यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र सक्रिय मानवीय कॉरिडोर मोक्रानी डोमानो बॉर्डर क्रॉसिंग है, जहां कारितास यूक्रेन ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर एक साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की है। जिस तरह से यूक्रेन के लोग रूसी संघ के कब्जे वाले इलाकों को छोड़कर कीव सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में पहुंचते हैं, उनमें एक कड़वी उलझन है। सीधे सीमा पार करने के बजाय उन्हें रूस और बेलारूस से होकर गुजरना पड़ता है। हजारों किलोमीटर का सफर, प्रक्रिया और घंटों की चेकिंग के बाद वे आखिरकार मोक्रानी डोमानोव बॉर्डर क्रॉसिंग पहुंचते हैं, जहां यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र मानवतावादी गलियारा अभी चालू है। जब वे आखिरकार यूक्रेन पहुंचते हैं तो वे थके हुए, कमजोर और सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। यूक्रेन में 66% आबादी कलीसिया पर भरोसा करती है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ यह रिश्ता क्यों और कैसे बना। उनकी मदद करने वाले मानवीय संगठनों में से एक कारितास यूक्रेन है, जो फरवरी 2025 से जमीन पर सक्रिय है। कारितास यूक्रेन के उपाध्यक्ष शेलेस्चुक बताते हैं, हमारा काम लोगों को जरूरतों और जिन हालात में वे पहुंचते हैं उनसे शुरू होता है। लोग बॉर्डर पर बिना किसी रास्ते और बिना परिवहन के पहुंचते हैं, इसलिए हमने परिवहन का इंतजाम किया, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों और कम चलने फिरने वाले लोगों के लिए, जिनके पास खुद से चुनौतियों का सामना करने के लिए साधन नहीं है। कब्जे वाले इलाकों में सफर में अक्सर 3, 4 या 5 दिन भी लग जाते हैं, जिनमें कई बार परिवहन बदलना पड़ता है। यह एक लंबी और बहुत थकाने वाली यात्रा है। हमारे लिए लोगों की गरिमा का सम्मान करते हुए उन जरूरतों को पूरा करना जरूरी था, ताकि उन्हें स्वागत और स्वीकृत महसूस हो सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधीक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की चर्चा करता है। आज हम भाग 4 का समापन करते हुए दस्तावेज के 5वें और अंतिम भाग, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, की शुरुआत करेंगे। श्रोताओं, 2021 से 2024 के धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक एकता और विश्व पत्र उत उनुम सिंथ के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है, जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा में इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर, कलिसिया के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता आधारित एकता के आदर्श की तलाश करना शामिल है, जो एकतावर्धक वार्ता के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती है। धर्म सभा इस बात की आशा करती है कि यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बनेगा, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में, जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं, जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है, जो सभों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, दूसरी कलिसियाओं और ख्रिस्तीय समुदायों से भ्रातृत्व में प्रतिनिधियों की धर्म सभा में समृद्ध भागीदारी इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम अपने एकतावर्धक प्रतिभागियों दोनों पूर्वी और पश्चिमी सिनोडल प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। एकतावर्धक वार्ता हमारे लिए सिनोडालिटी और कलिसिया की एकता की समझ को विकसित करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण बात है। यह हमसे एकतावर्धक सिनोडल अभ्यासों की मांग करती है, जिसमें सलाह मशविरा और विभिन्न जरूरी सवालों पर विचार मंथन करना शामिल है। यह हम सबों से पारस्परिक उत्तरदायित्व लेने हेतु निमंत्रण देती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने को उस रूप में पाते हैं जो हम हैं, हम जो करते हैं और जिसकी हम शिक्षा देते हैं। यह हमारी एकता है जो हमारे लिए एक बपतिस्मा में इसे संभव बनाती है, जो हमें एकता का आयाम सहभागिता और प्रेरिताई प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम ईश प्रजा के रूप में अपनी पहचान को पाते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस इस बात को घोषित करते हैं कि सन 2025 जयंती का वर्ष है, जिसमें हम निसिया कलिसिया की प्रथम एकतावर्धक आम सभा की वर्षगांठ मनाएंगे, जो हमारे विश्वास और ख्रिस्तीय एकता को निरूपित करती है। 1700वीं सालगिरह की तैयारी और इसका एक साथ मनाया जाना हमारे लिए एक अवसर होगा, जहां हम अपने विश्वास की गहराई को प्राप्त करेंगे और एक साथ मिलकर ख्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करेंगे तथा सिनोडालिटी के विभिन्न स्वरूपों को भी परंपराओं के संग साझा करेंगे। यह हमारे लिए पास्का को एक तिथि में मनाने हेतु पहल करने में मदद करेगा, जिससे हम यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को एक साथ मना सकेंगे। ये सारी चीजें सन 2025 में होंगी। यह हमें उन्हें घोषित करने की प्रेरिताई हेतु और अधिक शक्ति प्रदान करेगा, जो सारी दुनिया के लिए जीवन और मुक्ति हैं। श्रोताओं, सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के पांचवें भाग का शीर्षक है, अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ। अपने शिष्यों को प्रेरिताई के लिए तैयार करते हुए यीशु उन्हें और एक बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने उनके ऊपर फूंकते हुए कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। श्रोताओं, पुनरुत्थान की संध्या को यीशु अपने शिष्यों को अपना मुक्तिदायी शांति का उपहार प्रदान करती और उन्हें अपनी प्रेरिताई के साझेदार बनाते हैं। उनकी शांति हमारे लिए जीवन की पूर्णता को व्यक्त करती है, ईश्वर के संग, भाई बहनों और सृष्टि के संग एकता को। उनकी प्रेरिताई ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है, जो हम में से प्रत्येक को दिया गया है, बिना किसी अपवाद के पिता के प्रेम और करुणा को घोषित करना। जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्द हमें इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर ने शुरू में क्या किया। अब अंतिम व्यारी के कमरे में आत्मा की सांस के साथ नई सृष्टि की शुरुआत होती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के एक समूह को हम उत्पन्न होता पाते हैं। श्रोताओं, ईश प्रजा के लोगों को एक उचित प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे वे सुसमाचार की खुशी का साक्ष्य दे सकें और सिनोडालिटी को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। सर्वप्रथम ईश्वर के स्वतंत्र बेटे बेटियों के रूप में यीशु ख्रिस्त का अनुसरण, प्रार्थना में उनके जीवन पर चिंतन और उन्हें उनमें पहचानना जो अपने में गरीब हैं। सिनोडालिटी में हम बुलाहटिए और प्रेरिताई सचेतना, कलिसिया के रिश्तों को जीने के एक नए तरीके और भागीदारी के संदर्भ में कलिसिया

सिनोडालिटी का प्रशिक्षण और कलिस्स की सिनोडल शैली लोगों में इस बात की सचेतना लाएगी कि बपतिस्मा में मिले उपहार को हमें सबों की भलाई हेतु उपयोग में लाने की जरूरत है। वे अपने में गुप्त या छुपे हुए नहीं रह सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम इसकी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जैसे ही संत पापा लियो 14वें का विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास प्रकाशित हुआ, डरहम यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी प्रोफेसर एना रोलाइंस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि इतना दमदार संदेश, जो हमारे AI युग के फायदे और नुकसान दोनों को बताता है, कलीसिया और दुनिया पर एक हमेशा रहने वाला छाप छोड़ेगा। संत पापा लियो द्वारा हस्ताक्षरित इस दस्तावेज का अनावरण 25 मई को वाटिकन के न्यू सिनड हॉल में स्वयं पापा की उपस्थिति में किया गया। संत पापा लियो, यह संत पापा लियो 13वें के ऐतिहासिक विश्व पत्र रेरुम नोवारुम की 135वीं वर्षगांठ पर हुआ। कार्यक्रम के बाद वाटिकन न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर रोलाइंस ने इस विश्व पत्र को दो खास वजहों से बहुत जरूरी योगदान बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, विश्व पत्र में बताए गए टेक्नोलॉजिकल मुद्दों को लेकर इंसानियत बहुत जरूरी समय का सामना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मुद्दों के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कोई कल नहीं है, क्योंकि काम करने का स्थान, श्रम, प्रवासन, परिवारों, राजनीतिक संगठनों और दुनिया भर के झगड़ों पर इनका असर अभी है, कल भी था और कल भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने माना कि बहुत से लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सवालों पर बात करने में संदेहजनक या खुद को काबिल नहीं समझते, और संत पापा विश्व पत्र में यह कहते हैं कि शायद कोई और इन चीजों के बारे में सोचेगा, लेकिन हमें इनके बारे में सोचना होगा और हमें इनके बारे में मिलकर सोचना होगा। धर्मशास्त्री ने सुझाव दिया कि मैग्निफिका ह्यूमानिटास की मुख्य चिंताओं में से एक यह निश्चित करना है कि ये सवाल सिर्फ निजी जगहों पर न छोड़े जाएं, जो इंसानी गरिमा के बजाय मुख्य रूप से मुनाफे से बनी हो। उन्होंने कहा कि विश्व पत्र इस बात को जोर देता

है कि आम भलाई को बढ़ावा देने के मकसद से होने वाली किसी भी बातचीत में उन आवाज़ों को केंद्र में होना चाहिए। प्रोफेसर रोलैंड्स ने इंसानियत के बारे में गहरे नैतिक और आध्यात्मिक सवाल उठाने में विश्व मंच पर संत पापा की अनोखी आवाज़ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संत पापा समाज को बुनियादी सवालों पर सोचने की चुनौती देते हैं। हम मानव जीवन को क्या समझते हैं? हम इंसान के तौर पर कौन हैं? हम अपनी इंसानियत और अपनी जिंदगी में किस मनोभाव और लक्ष्य को पाना चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, वे झूठी कहानियों, इंसान होने के मतलब के बारे में झूठी बातों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं, खासकर जो दूसरों पर ताकत या दबदबा रखती है, चाहे वह राजनीति हो, युद्ध हो, लड़ाई हो या अर्थव्यवस्था हो। उन बातों के विपरीत संत पापा लियो ने जो कहा, उसे उन्होंने प्यार की सभ्यता का बहुत सुंदर नजरिया बताया। हमें मिलकर प्यार की उस सभ्यता को बनाने की जरूरत है और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम इस भावना के साथ जिएं कि हम प्यार करने के लिए बनाए गए और सीमित जीव हैं, न्याय की चाहत रखते हैं और हम सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं। उधर पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफूर में चांद सीमा के पास अल्टीना शहर में तीव्र समर्थन बल RSF के हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए हैं। मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन शहर के ऊपर उड़ा और उसने 4 मिसाइलें दागी, जिनमें से एक बाजार के रेस्टोरेंट में गिरा, जिससे आम लोगों की मौत हो गई। कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। अप्रैल 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से इस लड़ाई में कथित तौर पर लगभग 4 लाख मौतें हुई हैं, जो दुनिया का सबसे बुरा मानवीय संकट बना हुआ है। उधर प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में एबोला महामारी लगातार फैल रही है। कांगो के स्वास्थ्य संस्थान के नवीनतम डेटा के अनुसार संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है, जिनमें 101 की लैब से पुष्टि हो चुकी है और कम से कम 119 संदिग्ध मौतें हुई हैं। इस वायरस के फैलने की गलत जानकारी और असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई है, जिसने सालों से इस पूर्वी अफ्रीकी देश को परेशान किया है। एक सर्वे के अनुसार प्रभावित इलाकों में साक्षात्कार किए गए लोगों में से 34% ही इबोला फैलने के तरीकों को सही ढंग से पहचान पाए हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस बीमारी को आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी घटना या पैसे जुटाने के लिए बनाई गई एक योजना मानता है। उधर यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र सक्रिय मानवीय कॉरिडोर मोक्रानी डोमानो बॉर्डर क्रॉसिंग है, जहां कारितास यूक्रेन ने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर 1 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की है। जिस तरह से यूक्रेन के लोग रूसी संघ के कब्जे वाले इलाकों को छोड़कर कीव सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में पहुंचते हैं, उनमें एक कड़वी उलझन है। सीधे सीमा पार करने के बजाय उन्हें रूस और बेलारूस से होकर गुजरना पड़ता है। हजारों किलोमीटर का सफर, प्रक्रिया और घंटों की चेकिंग के बाद वे आखिरकार मोक्रानी डोमानोव बॉर्डर क्रॉसिंग पहुंचते हैं, जहां यूक्रेनी नागरिकों के लिए एकमात्र मानवतावादी गलियारा अभी चालू है। जब वे आखिरकार यूक्रेन पहुंचते हैं तो वे थके हुए, कमजोर और सहारे की जरूरत महसूस करते हैं। यूक्रेन में 66% आबादी कलीसिया पर भरोसा करती है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ यह रिश्ता क्यों और कैसे बना। उनकी मदद करने वाले मानवीय संगठनों में से एक कारितास यूक्रेन है, जो फरवरी 2025 से जमीन पर सक्रिय है। कारितास यूक्रेन के उपाध्यक्ष शेलेस्चुक बताते हैं, हमारा काम लोगों को जरूरतों और जिन हालात में वे पहुंचते हैं उनसे शुरू होता है। लोग बॉर्डर पर बिना किसी रास्ते और बिना परिवहन के पहुंचते हैं, इसलिए हमने परिवहन का इंतजाम किया, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोगों और कम चलने फिरने वाले लोगों के लिए, जिनके पास खुद से चुनौतियों का सामना करने के लिए साधन नहीं है। कब्जे वाले इलाकों में सफर में अक्सर 3, 4 या 5 दिन भी लग जाते हैं,
जिनमें कई बार परिवहन बदलना पड़ता है। यह एक लंबी और बहुत थकाने वाली यात्रा है। हमारे लिए लोगों की गरिमा का सम्मान करते हुए उन जरूरतों को पूरा करना जरूरी था, ताकि उन्हें स्वागत और स्वीकृत महसूस हो सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।